0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखे और पिघल पड़े। और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई,

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने हो

हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलाइना दे शहर डोरंटो।

हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना दे शहर डोरंटो। जी दोस्तों, हाँ, तुसी सुन रहे हो।

गुरुस्वारे सत्कार्य गुरु खालसा जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा 22 नवंबर 1998 दा दिन गुरु नानक नाम देव गुरु सिख संगत वास्ते अत्यंत सुभागा दिन है, जिस दिन अमृत दे दाते सरबंसदानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते पावन चरण कमलां ते कौतकां राहीं पवित्र होई इस धरती ते गुरु खालसा पंथ ते 300 साल साजना दिवस की स्वयमान परी याद में सदीवी बनाउण लई खालसा विरासत यादगारी कंपलैक्स की उसारी का आरंभ किया जा रहा है। इस धरती में 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर हजूर ने खरीद के अपनी पूज माता नानकी जी की याद में चक माता नानकी का नाम दिता है। इस धरती का पहला ते संसार का सब तो अदुती कौतक यह होया कि 9 साल की संसारक उम्र के गोविंद राय जी ने अपने पूज पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने दर से आए कश्मीरी पंडितों की बेनती से समुची मानता विशेष करके हिंदुस्तान वासियों की धार्मिक सभ्याचार समाजिक आजादी बरकरार रखने लई शहादत वास्ते दिल्ली भेजिया। इसी दिल्ली तो कुछ अरसे पिछों 9वें पातशाह हजूर का गुरु प्यारे सिख भाई जेता जी राही के वसीस ही लिया गया से। इस पिछों तो लासानी रूहानी कौतकों की झड़ी ही लग गई सी। गुरु पिता वालों इस तरह संसारी मनुखा अणगैरत वाली आनंदमई जिंदगी लिए अपना सीस कुरबान करने उपरंत गुरु दर तो आनंद प्राप्ति की रीझ रखने वाले ने गुरु ने सीस भेट कर अमुक प्रवाह चला दिता है। शायद इसे लिए इस धरती का 10वें पातशाह जी ने नाम ही आनंदपुर रख दिता है। वो पुरी जिथे आ के कोई भी अपने सतगुरु के सन्मुख हो के गुरु की मत विच जीउंदे आ गुरु के तप तेज का तारनी बन के खालसे के रूप में आनंदमय जिंदगी जीव सकता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 1699 की विसाखी से खंडे बाटी के पावल राही सीस भेट करने वाले 5 गुरसिखां अपने प्यारे कह के अपना सब कुछ अर्पित करदे आ आप उन्होंने अगे सीस निभाउंदे आ आपे गुरचेला दा लासानी कौतक कीता। फिर हजारां की गिणती विच अपने दर ते आउण वालियां नूं गुरु खालसा पंथ का नाम दे के निवाजते होया ये वचन उचारे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब करोर परे। इसे गुरु खालसा पंथ के बोल वाले इस पंथ राही सरबत दे भले दे कार्ज लई गुरु पिता ने अपने समेत अपना समुचा परिवार कुर्बान कर

0: बता
1: दूं?
0: हाँ। वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह तक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्ते नाल

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाउंदे हन रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दोस्त दर्शन सिंह खक्कर नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज।

0: गीत और सुन दे जिस इंद्र सिंधा
1: भाई बल्ले बल्ले बल्ले भाई आज तो नजारा आ गया भाई।
2: आप देखो ना जी कितनी सोनी जन लेके आया है।
1: लो भाई अमली का ब्याह भी हो गया और ताली देता हूँ
2: वाले
1: ला तो शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई पर जिंदा बहुत बैठा बैठा हो जाए
2: मालूम ला दें पैसे नहीं लेने थोड़ा
1: भाई वाह वाह वाह वा।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3258 732-874-3259 and 856-397-0301 855

दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हाँ ताड़ा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खाक प्रवास रेडियो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी सो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी दे रेडियो और न्यूयॉर्क तो ताड़े नाल रूबरू हो रहे जी ते आज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करन जा रहे हैं ताड़े नाल सो तुहानू पता कि एक दिन छड़ के ते दूसरे दिन असीं प्रोग्राम करदे हां जिहदे विच कुछ गीत फिर असी कुछ अमेरिका दिया दुनिया दिया खबर लैके ताडे नाल रूबरू हुन्ने ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू सेहत संबंधी जानकारियां भरपूर जानकारियां एक लड़ीवार कथा दी तरह ओ दिंदे है जिहदे विच बहुत स्रोते उन्हां नूं सुणदे है क्योंकि तीन प्रोग्राम करदे है जी दिहाड़ी च बहुत वड्डी मेहनत कर रहे कोई मफाद नहीं है हिंदी च भी करते इंगलिश च भी करते अपने नाल इत्थे पंजाबी विच करते हैं सो टाइम मिले ते वो प्रोग्राम भी सुन लिया करो उन्हां दी वीडियो ते फेसबुक भी देते फेसबुक ते लाइव भी होंदे सो खबरां भी ऐसी कोशिश करी दियां कि तुहाडे तक म्यारी खबरां लैके आईए ते कुछ गीत भी चोण में कोशिश करी दे कि वधिया गीत कल्चर गीत जिहड़े जिहदे विच वैगलर ना हो जिहदे विच इहो जिहा शब्दवाली ना हो असी कोशिश करी दी है तुहाडे तक पहुंचाउण दी सो लो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां जी किरपा होगी तेरी मालका ए बाबा गुलाब सिंह जी